जो सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीन बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया के हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीन ही बातें हैं, तो आप सबको दाल रोटी बाप दिलाएगा। दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के को न खाओ। अनुभव किए है ना, पुराने जो पहले पहले आए हैं उन्होंने अनुभव कर लिए, कभी भूखे रहे रहे, और ये जो गुण है ना उसको बोर्नविटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था। और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते हैं, सबका पेट भर गया। बोर्नविटा बनाने आते हैं, ऐसी भी हालत हो, ये गुड़ सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, ये बोर्नविटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। आईवेल में ये बोर्नविटा बहुत काम में आएगा। चार बातें याद करना, ऐसे नहीं एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो, चार ही बातें हैं, सच्चाई, दिल की सच्चाई। दिल बड़ी, दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वो पूर्ण हो ही जाती है। करके देखो, जहाँ दिल बड़ी है ना वहाँ सब इच्छाएं पूरी हो जाती। दिल छोटी करेंगे तो सामग्री सब छोटी हो जाती। बाप राजी तो क्या कमी है। शरत करो, ठीक है, तो फिर मुबारक के बताने बजाओ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

give पर attention खिंचवा रही, क्योंकि इसमें time बहुत

छोटे छोटे फिर संकल्प है, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते, इसलिए फियरत को भी कब करो, टाइम इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे? हाथ उठाओ। तो बाप दादा यही सौगात चाहते हैं रत को समाप्त करो, अटेंशन दो, बुराई बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन फियरत के ऊपर भी अटेंशन देना है। पसंद है ना? पसंद है? हाथ उठाओ। पसंद है तो सब पास हो जाएंगे, पसंद है तो पसंद चीज तो दिल से की जाती है। तो मोबाइल

Ese es el tipazo. José. Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Let's go.

compensate.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते हैं, अभी अभी देखना चाहते एक सेकंड में स्वराज के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में दो तीन मिनट के लिए राजद कारी के सीट पर सेट हो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: कुछ हो नहीं। इसलिए पाप की शुभाशय कि हर एक बच्चा इस फर्श की मुबारक है और आगे फर्श की भी मुबारक है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्मा बाप को देगा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है हर आत्मा के वृद्ध कैसी भी है कोई भी है, लेकिन अपने शुभ भावना से शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना करना भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले नहीं, ये तो है ही ऐसे नहीं। सुनाया ना अभी आवश्यकता है, रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपने शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभावना के कोई नहीं सुन सकता, ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना रहम दिल ये सहज काम करता है। ब्रह्मा बाप को देखा मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, मालूम है, लेकिन उसी बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देगा, लेकिन फिर उसको बहुत प्यार भी करेगा, जिससे वो समझ जाते थे तो पापा का प्यार है और प्यार में गलती महसूस था कि शक्ति उसमें आ जाती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

romance you.

बच्चों को

Sad.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार साथी बनने का प्यार इस संगम बड़ी अनुभव करते बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो अकेले या साथ में हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के कंबाइंड कंबाइंड रहते हो ना, साथ जन्म है।

0: बचाओ, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है, और साथ ही चलने वाला।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Jacobin, Bob Dada, 60 Xadjel, Red Ranger, Piche Piche, Nairanger.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख शांति के कारण सभी दिल से
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खांसी के लिए
2: दादी गए थे बगीचे में, दादी तीन दिन रहे उसी कारण से, और इसी का भी दादी ने दृष्टि ज्ञान दिया था।
1: गुलजार दादी गई थी इनो की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
3: ये तो कल पहले इनो का भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
4: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दिल में झंडा तो लहरा लिया और कपड़े का झंडा भी लहरा लिया जगह जगह पर। अभी पार्थक्यता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराना ही है। यही फिर तलो दृढ़ प्रतिज्ञा का फिर तलो के जल्दी से जल्दी ये अब तो कसे चुराओ जो पाप का वर्षा है मुक्ति का वो सबको दिलाओ, क्योंकि परेशान बहुत है। आप शान में हो वो परेशान
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सिक्का सिर्फ सिक्का नहीं तो अगर सिक्का देती भी है, देने पड़ते भी है, लेकिन किमिया और सिक्का किमिया रूप बन के सिक्का दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्का का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्का दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्का देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्का है, तो सिक्का सिक्का की सिक्का नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किमिया और सिक्का साथ साथ हो।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Rick. Kitchen.

Tiamat.

Девку.

Ciao.

So

శక్తి. Your son.

Personne.

something.

ちゃん。Bye.

Attention on both. आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। माया का काम है आना और आप बच्चों का some

चाय पानी भी पिला लेते। पता है कौन सी खा?

सोचते कि अभी तो टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी तो समय पर

7.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जानने से, मानने से।

क्या प्राप्तियां होती है। उस स्मृति ने

0: ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कलप में एक बार मिलती है, आत्माएं और देवात्माएं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

sucesso.

उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? उसने समय अनुसार

مشکل.

मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क।

0: इसका साधन है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे। एक
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Satnam।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को निश्चय कि बच्चे अच्छे चाहे थोड़ा पुरुषार्थ में कभी कभी फिक्र आते भी है, लेकिन बाबा और मैं कंबाइंड है, कंबाइंड रहेंगे, ये पक्के निश्चय। ठीक बोला, ठीक बोला, कांध ऐसे करो, कांध ऐसे, हाथ नहीं उठाओ, कांध ऐसे करो। जो

있어.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए। ये मैं बन धोखा दे देता। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित और निर्माण बाउस बाप दादा ने
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस वर्ग से ये आ रही है।

0: उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्मा अनुभव सुना है तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

did.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे कौन रहेंगे? आप ही हो ना, चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतक। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो पाप मेरे कंबाइंड चिंता पाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्यों का पाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए किसके बच्चे? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे बाहर आ जाए, लेकिन बाहर को भी आप रुई बना सकते हो। पाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है वो रुई हो जाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया है ना। आप भले कमजोर हो लेकिन सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, तो समय में काम में लगाओ, कहने तक नहीं काम में लगाओ, तो सदा खुश नेमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुश नेमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो, करे चैलेंज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति डरने बहुत अच्छा करती, इसलिए देखो कोर्ट में भी तराजू निशानी तराजू इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों और हल चलो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां वहां एकाग्र हो जाए, डरने हो जाए, किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफल

0: oro con prena de tiro. Tigana.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा लगता है, वो मांग है, लेकिन बातें छोटी छोटी बातें रुकावट डालती अभी इसको मिटाने की कोशिश करो, सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाती। अभी तक के रिजल्ट में जो सोचते साथ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़े परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं, वाह फॉलोअर या परिवार परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न संस्कार। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में एक परिवार एक बाप एक राज तो एक हो के चलना। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है। लेकिन यहां धर्म और राज दोनों की स्थापना सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता है उनका सिर्फ धर्म है, राज नहीं है। या तो आप सबको राज भी करना है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज कर दी गई, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़े बड़े है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबकी चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता, अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा।

अच्छी आगे बढ़ गई, लेकिन

0: इसके अभी आवश्यकता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृद्धि में दृष्टि में बोल में चाल में निर्माणता दिखाई दे। इसलिए बैलेंस ये तो है, ये सर ये तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को तो क्या ब्रह्मन आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो, ये निर्माण और निर्माण का बैलेंस।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? बड़ी वर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, नेगेटिव संकल्प चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाए, क्योंकि ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आप सहज सफलता दिलाएंगे। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से मुश्किल बात आए। वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल की है, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक या अंधकार हो जाता है अगर कोई गलती से को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएंगे। आप भी ये गलती करते हो। से बात बड़ी

0: बहुत सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई। अपन ने मास्टर सर्वशक्तिवानों इस स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते, सीट है तो अपसेट नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Emerge. Rahe. Joke.

Açtı.

такой пипотя. Aquí la nao.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जा भी तो चाहिए ना, रॉयल प्रजा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। सदी सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सदी याद में लव सीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई बुशारत नहीं कर, नील के सागर में समा जाओ, कभी कभी बच्चे और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते बस अब थोड़ी सी है। जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सनी में समाया डुबकी लगाई निकल समाते रहो। Yeah.

0: Sapa! Sunny is Shakti Meadow. To Sada Kilie. Men not the same book told Jang. Vese be mukti varush manare na. To men not the same be mukta. उसका साधन है सनी में समाया हुआ रही सनी का अनुभव सभी को है ना कि नहीं है, है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप से बाप दादा सिस्टर ने सबसे ज्यादा किसका है किसका है सभी हाथ उठाएंगे मेरा है ऐसे ना है ना पीछे वालों का भी है हाथ उठा रहे साइलेंस का हाथ उठाओ आवाज वाला नहीं सबका तो बाप दादा आज की कहती है सनी की शक्ति सदा कार्य में लगाओ सहजना योग लगाते हो ते भूल जाए देखी दुनिया भूल जाए माया जीत बने जब सनी की छत्र छाया में रहेंगे सनी की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती सनी की साखट से बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना देती है निकलो ही नहीं समाए रहो सनी कोई भी कार्य करते हुए सनी को नहीं भूल सकता सनी में खोया हुआ हर कार्य करता जैसे आज के दिन कोई नहीं ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो गया अपने समान सहज बना देगा, क्यों जिसके साथ सने है उस जैसा बनना, ये मुश्किल नहीं होता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी चाहे शाखाएं है, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। जाओ सेवा करने, लेकिन कर भी नहीं पाओ, ऐसा समय भी आने वाले। इसलिए जो करना है वो अब करो, कब नहीं। क्योंकि समय पांचों तत्व बाप के पास आ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इच्छा पाप को जो अपना हिम्मत कम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, खास साहब को चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेसमैन

किचन में बात है, बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उनको चिंता से हटाए अपनी राशि खजाने का मैं तो सुनाऊं। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हम जिंस कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं उन्हों को चिंता है क्या होगा कैसे होगा, है चिंता? हाँ, नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा, नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो चिंता नहीं है। बेफिक्र बात है, बिजनेस में बेफिक्र बात है। दोनों ने हाथ उठाया। अच्छा, नहीं अभी आप नीचे करो। जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वो हाथ उठा सकते हो, शर्म आएगा।
ऐसे क्या बन जाते, ये तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा और बच जाए, टचिंग होगी। अब इस समय अनुसार ये करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र मारना, बिजनेस भी करना और अपनी स्थिति भी करना। तो सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बात जाए, फिक्र की बात भी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रही। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं, हिम्मत ही के मददगार नहीं। आप सोचेंगे बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है। हिम्मत बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो, तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो, बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो, कौन हो, बेफिक्र बात।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा बच्चों के निमित्त पर निस्वार्थ विश्व सेवा को देख
3: सबसे ज्यादा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा टीचर साथ उठो, अच्छा टीचर सभी स्वयं भी सफल करो और सफल करो, सेवा में वृद्धि होना अर्थात खजानों को सफल किया और करें तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सुधई वृद्धि होती जाएगी। हिम्मत लो, बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान में हिम्मत कम दिलाने की शक्ति है। हिम्मत लो, हर कार्य में मनसा में भी वाचा में भी संबंध संपर्क में भी कर्म में भी हिम्मत लो। टीचर्स की सीटी है हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना, क्योंकि टीचर्स को जो बाप की मुरली सुनाने की चांस मिले और तख्त मिले ये एक्स्ट्रा मदद है। तो हिम्मत और खुलास दिलाओ, सारा क्लास रूहानी गिरा हुआ गुलाब दिखाई दे। सुना टीचर्स ने होलास में लाओ क्लास को।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब स्थिति ऐसी

0: सफर था भी, कभी आती कभी बोनी, परसेंटेज में हो जाती। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो, ज्यादा भले हो कम नहीं हो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही है, और फिर भी हम ही होंगे, ये निश्चय विजय बना दे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे, फेस पकड़े हुए है ना, तब तो टीचर बनी है। श्रेष्ठ नजर से देखते। अच्छा अच्छा, बहुत आई है टीचर्स में फॉरेन की।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा के मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करनार पर बाप सम्मान न्यारे और प्यारे, बाप सम्मान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक शिव बाबा। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाते, तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को सम्मान बनाना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

Bob Gittelmeckern. Baba, baba.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो कर अशांति चारों ओर, भिन्न भिन्न स्वरूप में भर रही, उसके लिए

0: சேவை செய், வாணிக்கு சேவா
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो, जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुस्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुँचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत पढ़नी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पीछे वाले पक्के हैं।

0: ese. कभी भी वायुमंडल में पदवी होती है तो क्या करते हो? खुश भी फैलाते हो ना, पदवी सहन नहीं होती, कोई ना कोई कुछ भी का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम योग श्रेष्ठ है वो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुख में बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने चाहते दूसरों का दुख देख करके भी। आपके भाई है, आपके बहन है, दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से आत्मक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, छियासठ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष, ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए, ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी है, कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो, इससे बाप कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, फारिश

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और प्यारी।

लाइफ में हद तक का मेरा पन, हद तक का मैं पन से न्यारी। रही है उसकी रिजल्ट, बीमारी कितनी भी है एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्यों इसके प्रैक्टिकल निशानी देख रहे तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते?

0: Сила мака се отца се ортечало папко апменеще
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं माया, अकेले करने की कोशिश सदा कंबाइंड रहने वाले।

स्वरूपों

जो रावण का खजाना है ये पाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बड़े नशे से

0: रहता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये रोज हरे को काटनी चाहिए, ऐसे नहीं हम बिजी है बीच में, समय पर समय एक सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो बात भी कर रहा हो, लेकिन एक सेकंड उनको बीटल करा सकते, और स्वयं भी अभ्यास कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। दो चार सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी, नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विधेयी बनने में टाइम लग जाता, और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब जाए उसी समय हो जाएगा, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है, अचानक के पेपर में ये विधेयी पन का अभ्यास बहुत आवश्यक, और विधेयी बनने का पुरुषार्थ करते रहे तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी, फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगा, अभ्यास ही हो गया ना, एक सेकंड में न्यारे होने का, तो कोई भी बात हुई एक सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाए, सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ती। संस्कार मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे, लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएंगे, अगर विधेय बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो जानबूझ के माया

0: संस्कार कमजोर या सब देह के साथ और देह से न्यारा हो गया सबसे न्यारा, इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदतों की तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तभी विधेय बने। अच्छा,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे शिवा ओ भगवत सासे कर रही है, ऐसे स्वयं को भी सेवा और विश्व सेवा स्वसे

said.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्वरो

0: रूप भी है। वो चतुराई का रूप है, क्रोध की चतुराई का रूप है। वो क्या है? कहने में, समझने में, ऐसी समझती है, वह कहती है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो।
1: शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको

0: तो अपार की दृष्टि से देखो, हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहता है, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं। दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत आते, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष में नहीं हो। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा, और करता क्या? इसलिए आज जो होली का दिन है ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को पाप के रंग में रंग। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरा एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। खजाने सभी को एक जैसे, पालना सबको एक जैसे, दिनचर्या मर्यादाएं सबको एक जैसे। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कि विदेश की मर्यादाएं और है इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है, क्यों? कारण बाप मदद कम देता है क्या है? किसको ज्यादा देता हो, किसको कम? ऐसे है नहीं है, फिर क्यों? Choose.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए।
3: एक को छोटे बनाना सी

Ski. ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ, जो भी देखे, जो भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, अभी सभी बच्चों को एक ही श्रेष्ठ संकल्प सुनाने चाहिए कि अभी स्वयं भी निर्विघ्न रहो और अपने साथियों को संबंध में आने वालों को भी निर्विघ्न बनाओ। समय को समीप लाओ। तो कौरशन
2: ऐसे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। संकल्प

Yeah.

shit.

Kutu topa ne? Babda da kuşe.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं,

रिजल्ट में।

Sí.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: प्रलोभन ये नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की वह स्पीकर अच्छे बनने की वह ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की ये प्रलोभन नहीं है, ये तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रलोभन है जीवन मुक्त की, कोई बंधन नहीं, बुशारत की प्रलोभन जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

हिपोथेक करके। कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये भी व्यर्थ संकल्प का विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान। और आजकल ये

से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

श्रेष्ठ मदर वाणी की रेखा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर तौरे की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर अलग पहले नेचर नहीं अलग पहला मन अलग चीज है। इसी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इसी कर देवे। इसी अर्थात मिलनसार टाइट नेचर बहुत तो अच्छा ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो कुरक के बजाय उनकी विशेषता नहीं उस समय लगती अपने को मोल्ड कर सके मिलनसार हो सके छोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़ेपन में चल सके छोटे से छोटेपन में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके परों से रिगार्ड से चल सके बोल्ड कर सके इसी शरीर भी इसी रख तो बोल जाती है जहाँ भी बोलने और टाइट होगा तो बोल नहीं सके अल्लाह बेला भी नहीं इसी है तो चाहता इसी हो जाए अल्लाह बेला हो जाए नहीं पता तो निकालना इसी हो जाओ इसलिए इसी होगे ऐसे नहीं करना अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे सुभावना की शक्ति कम हो जाती, नहीं तो सुभावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो, बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतित है चाहे पापी है चाहे साधारण आए, भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, सुभावना रखी ना, मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नशीन हो, ये सुभावना रखी ना, शुभकामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा ये पापी क्यों आए हो, शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा, बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कलब पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलती बहन, परिवर्तन हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

यहाँ है खुशियों का संगम।

Jesse, coi, coi, coi.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चों को

Tschüssi.

usted, nej, hvor er det smukt.

açık.

इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगा check.

0: ritual aquí.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय शिवा के सफल सफलता का
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान के सीट स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के बावजूद देखो, कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Κοτσίκι, που ξέρετε και κάτι κοτσίκι, καζάνε και μάκα κατά τσίκι. Το ρεσάλτ με κέντρικα και μά καρνίκα που ξέρετε πότα τσέκρτη. Λέκεν το τσέμα καρτέο उसमें परसेंटेज पिने पिने जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अबे एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराते, क्रोध पर कराया लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो। क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रही। फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे है किस में मेरी कोई नुकसान है, समझा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

नंबर वार हो जाते हर शक्ति के वरदान को समय पर मान ऑर्डर कर सकते हो। Joke.

0: Russia. सदा इमर्ज रहे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ See.

0: sua mano. Osso na chime.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने सुना, जो बाप दादा ने संस्कार उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन के साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार व्रत लेती जाना तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाए। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो रिजल्ट तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहते हैं कि संस्कार के सब्जेक्ट में नंबर वन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: சுந்தரம்.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाएं हैं। देखो कोई रंग बिरंग की तो है ना, ये तो एक कलयुग के लास्ट का ये फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाती, अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति पर

मिट्टी में कहेंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगे, खुशी दिलाएंगे तो बस दो तीन दिन में दवाई से ठीक हो जाए। कभी भी एक

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि गाना का ईशा और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए फेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि फेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द को, बीज को अगर खत्म किया सहज हो जाएंगे। वो एक शब्द है, क्यों? ये क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं? इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। शब्द इंग्लिश में लिखो कितना मुश्किल लिखा जाता है।

0: चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी वार्धक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई बात

ऐसे बाप दादा ने देखा है, कि कई बच्चे लक्ष्य अपने

Apa?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संबंध को खत्म नहीं कर, कार्य

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कितना वेट आने का कारण थे अपमान का, मैं शब्द थे पान का, मैं एक है मैं आत्मा हूँ ये मैं,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो फायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो, फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो, फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। फायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रही है, रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाए। इतने सब इस जन्म के लिए आलमेटी गवर्नमेंट की सील लगा देना और हाजी हाजी करते रहना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो चाहे वो कर सकते। Sub

0: कभी प्रैक्टिकल मिला। समान बनना है तो समान करना भी है, चलना भी है। बाप दादा तो हर बच्चे को
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों को

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज

sip.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा अभी ये चाहते हैं जो कही तो गए ने हर कलप किए तभी गए ने, क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को मेरे कहते हो वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो, मेरा कहना अर्थात मालिक बनो, मन में जो संकल्प करने जाओ जितना समय वो संकल्प करने जाओ वो बंधा हुआ है, क्योंकि मेरा is

0: अच्छा योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले, अपने दिल की चैना सुना रही है। के अभी मन जीत जगत जीत बनना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुने कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत नहीं, दिल आराम, दिल
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: What?

इस बात पर अटेंशन दिला रही है, किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वभाव के स्वरूप

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है, जोश वाला चेहरा दूसरा देख के हट जाना चाहता है। और मुस्कुराए हुए चेहरे के नजदीक जाने जाएंगे तो आपको अभी का मुस्कुराता हुआ चेहरे का फोटो निकाल के देवे। वो फोटो अपने साथ रखेंगे या कागज का रखेंगे या दिल का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

upset.

0: संकल्प दोनों के मूल्य को जान। समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म को में सफल करने से अनेक जन्म वोट की प्राप्ति जमा होती है। ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर सफलता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है, देखा है? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो करने में मजा आता है, और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ कैसे होगा, क्या होगा, क्या पाठ पढ़े, जो होगा वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा।
2: Man, banana.
1: जो अज्ञान काल में नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ दिए, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बना। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्ट हुआ, और दूसरा सामना करने की शक्ति। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है, घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये घबरा तो है, मारो अच्छी तरह से। अर्थात सब कुछ छूट गया, ट्रस्टी माना सब पाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस घर का आता है ना तो घर पर होती, अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चित है। इसको
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो अंतर मिटा

Yuck.

Fața doară.

खजाने के मालिक richest in the world अखंड और अखंड खजाने जितने देंगे उतने बढ़ते जाते कब नहीं होंगे बढ़ेंगे।

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन दीवार पुरुषार्थ

शरद हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी शरद में थकावट अनुभव होती है। बाप दादा देखते हैं, लेकिन स्वयं Oh, shit.

0: जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के चलो उमंग उल्लास अपने अनुभव का सुनाते हुए एक दो के सहयोग
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

呼吸。

इस कभी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसके पीट करके कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्रह्मा परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करते हैं, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कार वश वो बद दुआ देते हैं, आप दुआ देने चाहते हो लेकिन वो बद दुआ देता है। लेकिन बद दुआ दी लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वो है, वो देने वाला है, आप लेने वाले। तो उसकी बद दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद दुआ लो नहीं, लेने वाले आप न दो न लो।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

yourself.

professor.

Radio.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा मुस्कुराती रहती है तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़ी खड़ी तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। बाप से मिलन का सदा आगे बढ़ाते, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पवित्र संकल्प करो, संस्कार कट करो, स्वभाव का मत भेदो। तीसरी बात, कमजोर होने की होती,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत बना रहे। योग दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

间是如你，就阿个说明间。

ね。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देख, पीछे आता है जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है। लेकिन समय तो बीत चुका है ना, इसलिए
3: इसके

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बना, खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अड़चन नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम पर सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा, बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएगी, दिल शिकस्त नहीं हो, क्योंकि श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ, करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी जो आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पाँव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पाँव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पाँव पड़ेंगे, जो आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh, shit.

0: समझते हैं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी सभी बच्चों का

Yeah.

there.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी दिल छोटे नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या, बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। स्लोगन है बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल, हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा, हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा, याद करे मेरा बाबा, और पापा हासिल नहीं हो, ये हो नहीं सकता।

0: बांधने की रस्सी है, क्या दिल का प्यार, तो अभी चेक करो कि दिल का प्यार है, खुदा को दोस्त बने, दोस्त किस लिए बनाते, बाप से भी दोस्त से ज्यादा प्यार होता, तो खुदा दोस्त बने ना, कोई भी बात आवे, बाबा आप समझ, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो, तो बाप ले लेना, प्यार के रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल नहीं सके। समझा? सभी ने समझा?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल चाहे संसार में चाहे ब्रह्मांड संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत तो परवस आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, आप ये हो का, आपको समृद्धि दिलाई, आप आत्मा हो। और इस श्रेष्ठ समृद्धि से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया, हिम्मत से समृद्धि दिलाओ। समृद्धि समृद्धि सुते ही दिलाएंगे, समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

சன் சக்தி சாந்தி ஏனம் அவக்குறம் கொத்து சேஜி சன்ஸ்கார் பண்ணாதிய கூட்டு கூட்டி அந்த டால்திய சொன்னச்சே தேவி நிகழ்த்தா संस्कार बनाओ मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया सभी पाप अच्छा लगता है यही कह रहे हैं ना मन में लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय के स्याही से दिल में समा जाती जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है बहुत प्यार आप पूछते हैं कितना प्यार है तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं

पाप कहती है कि पाप का सभी बच्चों से वायदा है, जब पाप का मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो पाप भी कहते हैं। जो भी हो जैसा भी हो मेरा ही

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी। ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं। जितना आगे जाएंगे उतने सूखियम बातें आएंगी, क्योंकि पास में दानर होना है ना। घबराओ नहीं, बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो बाहर भी रोई बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने कलम पास हुए हो पता है? है नशा। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं। अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है। स्मृति रखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सत्तर वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन और आलस और बहानेबाजी खेल देख लिया, चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल खूब देख के बचोगे। Yes.

चक्रम देखने चेत कभी भी देखो क्रोध आता है, अपमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात तो रही है, ये होता ही है, ये क्या है अलबेलापन नहीं है, ये भी तो करता है, मेजॉरिटी

0: जो चार को हल्का कर देते तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे के नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे। वो तो 3-4 मास के बच्चे के करते हैं, तो आपके बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे। हाथ बाप दादा नहीं उठाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते। लेकिन जो समझते हैं कुछ हो जाए, बाहर जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन बाहर को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पाँव भरा हूँ, इसीलिए गया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है? हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बचो। मुस्कुराती रहती है, वाह मेरे बच्चे लाडले, वाह। निश्चय से

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Spitz.

Uno merete. Lekin jo sane me. What's up?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सपे संतुष्टता के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर, सेवा अर्थात निमित्त भाव। दूसरा, निर्माण भावना। तीसरा, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट। और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले भाव के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो भाव के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल

0: चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय ब्राह्मण परिवार में आपका नाम ग्रामी नहीं सेवादारी हो अच्छी, लेकिन नाम नहीं है आपका, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आ गए। क्यों कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं, चांस नहीं मिला हिसाब किताब। इसीलिए निर्स्वार्थ सेवादारी, अपना स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ। दूसरा समझते हैं कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, और योग्य भी है। अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर चाहे आपने नहीं किया, लेकिन दिया किसको चांस, तो उसमें भी आपका शेयर जमा होगा, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चल।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कैसा भी सब।

If it could be much. Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे उस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। बाबा भी बंदा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना, जाती नजदीक भी नहीं आ सकती।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहती है God is truth। सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। ये अपने विशेष